0: लोडेड गानों वाला कीपैड फोन धमाकेदार साउंड के साथ कारवां मोबाइल।
1: Check it out, remix. Yeah, hunters.